अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

भगवान की, श्री आनंदकंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथनंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः श्रृंगार आरती की, जय जय श्री सीताराम।

विप्रदेनु सुर संतहिता नीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र जी की जय श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय श्री पवन सुत हनुमान जी की जय श्री उमापति महादेव जी की जय श्री रमापति रामचंद्र जी की श्री वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय श्री सीताराम नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं निकामशाम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं।

भर्जनं भव बीजानां मर्जनं सुकृतं वदामि।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में,

अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

प्रस्तुत है श्री मद्भगवद गीता का सल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भक्त की जिज्ञासा पराकाष्ठा पर है, वह प्रभु के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन करना चाहता है। भगवान से दिव्य चक्षु पाकर वह उस तेजस्वी दिव्य शस्त्रों व वस्त्रों से युक्त विशालकाय बहुआयामी स्वरूप को देखकर रोमांचित एवं कदाचित भयभीत हो उठता है।

श्री कृष्ण के विश्वरूप को प्रणाम करता हुआ अर्जुन कहता है कि हे अच्युत, मैंने अज्ञानतावश आपको मित्र व सखा समझा, आपका उपहास किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे विश्वमूर्ते, मुझ पर प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाओ।

जनार्दन अपना सौम्य रूप दिखलाकर प्रिय भक्त को आश्वस्त करते हैं। वे कहते हैं कि देवताओं की दुर्लभ इस स्वरूप के दर्शन किसी वेद ज्ञान, तप, दान अथवा पूजा से नहीं, अपितु मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही हो सकते हैं। श्री भगवान कहते हैं।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

0: वराह पर्वतमाला तेरा उद्गम स्थान, श्रृंगेरी हरिहर हम्पी तेरे तीर स्थान, धार्मिक एकता तेरा नारा, सांस्कृतिक क्षमता मंत्र प्यारा।
1: वरदा वेदवती हंद्री, वेणी भीमराती मलपहरिणी आदि पुण्य धाराओं को लेकर मुक्ति क्षेत्र में कृष्णा से तेरा संगम है कितना हृदयंगम।

0: तुम भद्रा, तुम्हारा नाम लेते ही 14वीं, 15वीं तथा 16वीं सदियों में दक्षिण भारत में बसे उस भूतल स्वर्ग विजयनगर साम्राज्य की याद आ जाती है, जिसकी राजविधियों में मोती पन्ने जैसी बहुमूल्य रत्न राशि बेची जाती थी। चांदी सोने से आभूषित वे राज प्रासाद, वेद उपनिषदों के अनुरणन में गुंजित मंदिर, संगीत नाट्य कला की निरंतर उपासना से महिमान्वित वे कला मंडप,
1: और हाँ, याद आ जाती है साहित्य समरांगण सार्वभौम श्री कृष्णदेव राय के सक्षम नेतृत्व में निश्चिंत प्रजा के सुख जीवन की, अपने तीरों पर पनपती सांस्कृतिक समृद्धि को गर्व से निहारती तुंगभद्रा की जलधाराओं की।
0: कर्नाटक की जनता तुंगभद्रा की उन अमृतमय धाराओं की नेति नेति प्रशंसा करती रहती है, गंगा स्नानम तुंगापानम कहकर।
1: साधारण जनता ही क्यों, बड़े बड़े विद्वान व पंडित भी तुम्हारी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। विजयनगर साम्राज्य के सुविख्यात तेलुगु कवि तेनाली रामकृष्ण ने कहा,

0: सुनो। हिरण्याक्ष के क्रूर बंधन में जकड़ी अपनी प्रिय सखी भूदेवी की रक्षा करने महाविष्णु वराह अवतार लिए उस दानव संघार के बाद विश्राम करते हुए विष्णु देव के दोनों खगों पर से जो श्वेत निकला वही तुंगभद्रा कहलाया, यानी कि मैं उस अवतार गाथा प्रणय गाथा की साक्षी हूं। मैं
1: अपने उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य के वराह पर्वत की पश्चिमी घाटियों में से कदम बढ़ाती ये सरित कन्या तुंगा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पावन श्रृंगेरी क्षेत्र में श्री शारदम्बा का तथा आगे शिमोगा में शिव जी का दर्शन कर लेती है। फिर तीर्थहल्ली में परशुराम की कुल्हाड़ी से बनी घाटी के तीर्थ को लेकर कुलली की तरफ चलती है अपनी छोटी बहन भद्रा की प्रतीक्षा में।
2: तुंगा की छोटी बहन भद्रा समीप ही के बाबा बडून पर्वतमाला में जन्म लेकर होन्नूर को पार करती बड़ी उत्सुकता से पहुंचती है कुड़ली अपनी बड़ी बहन तुंगा से मिलने।
0: हम दोनों का वो संयुक्त रूप अभीप्सित हितदायिनी तुंगभद्रा कहलाया, हमारी इस अपूर्व एकता के प्रतीक ठहरे मेरे तीरों पर बसे विविध तीर्थ स्थान। सबसे पहला क्षेत्र है हरिहरा।
1: गुहासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा के दर्शन के लिए घोर तपस्या की थी। वर्षों बाद ब्रह्मदेव के दर्शन हुए। उसने वर मांगा, पशु पक्षी दानव मानव आखिर हर या हरि तक से भी उसे प्राण भय न होने का, और पाया भी। बाद में उसकी क्रूरता के शिकार बने देवता लोग जाकर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के पैर पड़े उस राक्षस से उन्हें बचाने के लिए। आखिर हर और हरि के सम्मिलित अवतार हरिहरेश्वर द्वारा उस राक्षस का वध हुआ, और तभी से ये क्षेत्र गुहारण क्षेत्र और हरिहरेश्वर भी पुकारा जाने लगा।
2: इतिहास पुराण के अलावा तुंगभद्रा भारत जाति की राजनीतिक गतिविधियों की भी साक्षी रही। भारत के स्वातंत्र प्रदाता व जाति पिता महात्मा गांधी के स्मृति अवशेष 1948 में 15 फरवरी के दिन हरिहरा क्षेत्र के तुंगभद्रा में निमज्जित किए गए।

0: हरिहरा के बाद मेरी यात्रा उस शुभंकर प्रदेश किष्किंधा की तरफ चली, जहां सीता वियोग में दुखित श्री रामचंद्र को सीता का कुशल समाचार मिला। ये वो प्रदेश है जहां समुज्ज्वल वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक महातपस्वी विद्यारण्य के निर्देशन में विजयनगर महासाम्राज्य की स्थापना हुई थी। धार्मिक एकता, सांस्कृतिक क्षमता और ऐतिहासिक मान्यताओं का सुंदर साकार रूप था विजयनगर। कन्याकुमारी से लेकर उड़ीसा तक तथा पूर्व पश्चिम सरहदों तक के सुविशाल भूमंडल में विस्तृत विजयनगर।
1: सुप्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्री कृष्ण स्वामी ने अपने ग्रंथ सोर्सेज में इसका उल्लेख किया कि विजयनगर राजा वैष्णव होते हुए भी अपने राज में अन्य धर्मावलंबी नायक तथा सेनापतियों को रखा करते थे। मुसलमानों के लिए नगर में मस्जिदें थीं।
0: विजयनगर साम्राज्य सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी सुविख्यात था। राजधानी हम्पी संगीत, साहित्य, शिल्प, मूर्ति, स्थापत्य इत्यादि अनेक कलाओं का आगार था। मुझे लग रहा था कि कुबेर की अमरावती मानो स्वयं स्वर्ग से उतर आई है वहां पर।

0: आप कुछ पर्यटकों से मिलते हैं?
1: I'm from Germany. I was told by an Israeli girl.
2: मैं जर्मनी से आया हूँ। इसराइल से आई हुई एक और महिला पर्यटक ने मुझे हम्पी के दर्शन करने की सलाह दी। मेरे लिए यह एक अच्छा अनुभव है कि यहाँ भारतीय संस्कृति, सभ्यता व जन जीवन को नजदीक से देखने का अवसर मिला।
3: I enjoy Hampi very much because of the beautiful landscape.
0: यहाँ के सुंदर खंडहरों के बीच चलते फिरते देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। विजयनगर साम्राज्य के वैभव के बारे में मालूम होता कितना ही अच्छा लग रहा है। आई लव इट।
4: लेकिन सन 1565 ईस्वी की राक्षस तंगड़ी युद्ध ने इस स्वर्ग को नरक बना दिया। मेरे ही पुत्रों के बीच राज्य लिप्सा की नागिन का विष, निर्जीव नंदन वन, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मिटाने के प्रयत्न। इसका नतीजा क्या हुआ? यहां खड़े हुए शोकाकुल खंडहर, आज मेरी स्थिति नीरवता के बीच मौन यात्रा।
5: तुम्हारी वर्तमान विजय गाथा के बारे में पूछना तो हम भूल ही गए, तनिक बताओ तो सही।
4: जिस तरह मैंने इतिहास में प्रजा कल्याण व संस्कृति के उत्थान के लिए सभी उत्साही राजाओं को सहयोग दिया था, उसी तरह आज भी मैं आवश्यकता अनुकूल चलती आ रही हूँ। इसीलिए विकास संबंधी विविध क्षेत्रों में प्रजा को अपना सहयोग देती आ रही हूँ।
6: स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाने की परियोजना का श्री गणेश किया था। सन 1940 में सर आर्थर होप के हाथों कर्नाटक के होसपेट शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर एक बृहद जलाशय का शिलान्यास हुआ
0: और 1953 तक इस बांध का निर्माण पूरा हुआ। स्वतंत्र भारत के स्वर्णिम सपनों को साकार देखने की सर्वप्रथम स्फूर्ति तुंगभद्रा ने ही दी। इस बांध से संबंधित कुछ रोचक बातें बता रहे हैं श्री सी सुब्बाराव, तुंगभद्रा परियोजना के मुख्य अभियंता।
7: Main dam in masonry across the river, 5,712 feet in length, of which 2,300 feet in the middle portion.
8: Tungabhadra बांध की लंबाई 5,712 फुट है और उस पर 2,300 फुट का पिलवे है। नदी की बाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में 127 मील तक बहती है और दाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के बल्लारी तथा आंध्र के कर्नूल जिलों में 217 मील की दूरी तक बहती है, वहां के खेतों को सींचती हुई।
6: इस बांध का संपूर्ण आवाह क्षेत्र है 28,179 किलोमीटर और आज की जल ग्रहण क्षमता है
7: इन लेंथ ऑफ व्हिच 2300 फीट इन द मिडिल पोर्शन।
8: तुंगभद्रा बांध की लंबाई 5,712 फुट है और उस पर 2,300 फुट का पिलवे है। नदी की बाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में 127 मील तक बहती है और दाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के बल्लारी तथा आंध्र के कर्नूल जिलों में 217 मील की दूरी तक बहती है, वहां के खेतों को सींचती हुई।
6: इस बांध का संपूर्ण आवाह क्षेत्र है 28,179 किलोमीटर और आज की जल ग्रहण क्षमता है 133 टीएमसी फीट।
0: इस बांध द्वारा कर्नाटक के रायचूर तथा बल्लारी जिलों में 30 लाख हेक्टर की भूमि सिंचाई की सुविधा पा रही है। इस नदी के तीर प्रांतों की मिट्टी मुख्यतया लाल व काली मिट्टी है जो धान, गन्ने, मूंगफली, कपास, केले आदि के पैदावार के लिए लाभदायक है।
6: अरे हाँ, उन लहलहाते खेतों की तरफ देखो, लग रहा है कि खुशहाली के मेले लगे हुए हैं वहां। तुंगभद्रा की छत्र छाया में कितने खुश और निश्चिंत हैं वे लोग।
0: और नदी योजना की सफलता के बारे में किसानों के विचार। श्री शंकर गौड, किसान संघाध्यक्ष व पूर्व विधायक।
9: ये तुंगभद्रा ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ
10: ಬಾಂಧ ಬನ್ನೆಸೆ ಪಹಲೆ ಕಿಸಾನೋಂಕು ಜರೂರತ್ ಕೆ ಮುತಾಬಿಕ್ ಪಾನಿ ನಹೀ ಮಿಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಬಾಂಧ ಬನ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಕಿಸಾನೋಂಕು ಕಾಫಿ ಸುವಿಧಾ ಹುಯಿ ಔರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಫಸಲೆ ಜೈಸೆ ಕಪಾಸ್ ಮೂಂಗಫಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಭೀ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ
0: 70 ಸಾಲ ಕೆ अनुभवी किसान श्री एम वी नायक, एक स्वतंत्रता सेनानी तथा हरिहर नगर पालिका के पूर्वाध्यक्ष।
11: तुंगभद्रा नदी तटाक सुमार 4-5 सक्रिय कंपनी।
12: कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा के किनारों पर भद्रावती, शिवमोग्गा, हरिहर, दावनगिरे जैसे जगहों पर चीनी के कारखाने हैं और कई लोग इससे रोजी रोटी कमा रहे हैं।
6: इस पानी का उपयोग सिंचाई के अलावा बिजली उत्पादन में तथा मछली पालन में भी किया जा रहा है।
0: श्री सुब्बाराव, तुंगभद्रा परियोजना के अभियंता।
7: एंड फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर फॉर द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 99 मेगावाट्स द प्रोजेक्ट वाज टेकन अप इन 1945 एंड कंप्लीटेड इन 1953।
8: जल विद्युत के उत्पादन के लिए 1945 में तुंगभद्रा बांध परियोजना का संकल्प हुआ और 1953 तक यह पूरा हुआ। अब यहाँ बांध के दोनों तरफ 4 यूनिट तथा 9 मेगावाट के 2 बिजली घर हैं और हम्पी के पास इसी क्षमता का एक और बिजली घर है।
6: इन बिजली घरों द्वारा उत्पादित बिजली से आंध्र तथा कर्नाटक की प्रजा लाभ उठाती है।
0: तुंगभद्रा जलाशय का विस्तार 378 वर्ग किलोमीटर है, जो मछली पालन के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस केंद्र से प्रतिवर्ष 2000 टन से भी अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। आंध्र, केरल व कलकत्ते की प्रजा भी इन लाजवाब जल पुष्पों का स्वाद लेती है। सुनिए ये मछुआरे क्या कह रहे हैं। श्री कारे सत्तैया।
13: वो कटला मिर्गालो कावन कार्पो
14: रवो, कटला, मिर्गालो जैसे तरह तरह की मछलियां यहां पर मिलता है। 64 में मछली पकड़कर टोकरे में रखकर गांव को जाकर बेचा करते थे। हमको 4 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया मिलता था। अब 20 रुपया, 30 रुपया मिलता है। अब हम बच्चों को स्कूल को पढ़ाई के लिए भी भेजता है और मकान भी बना लिया है।
6: तुंगभद्रा बांध के यंत्र समूह की तैयारी में सुविधा के लिए सन 1948 में तुंगभद्रा प्रोजेक्ट वर्कशॉप तथा मशीनरी वर्कशॉप का आरंभ हुआ था। इसमें पहली बार वेल्डिंग तकनीक का उपयोग किया गया और बांध के फाटकों का निर्माण हुआ। बांध की समाप्ति के बाद सन 1967 में ये एक सार्वजनिक उपक्रम बना और धीरे धीरे इसका कार्यक्षेत्र बढ़ने लगा। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए ये संस्था अपनी सेवा प्रदान करती है।
0: इस वर्कशॉप के कार्यकलापों का विवरण दे रहे हैं तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक श्री एसपी त्रिपाठी।
15: कंपनी की स्थापना के समय इसके कर्मचारियों की संख्या थी 405 और अब आज 1993 में इनकी संख्या 1045 है। इस तरह कंपनी ने कई लोगों को रोजगार देने में साथ दिया। जब कंपनी 1960 में आरंभ हुई थी उस वक्त इसका उत्पादन मूल्य था 38 लाख रुपया और पिछले साल उत्पादन हुआ 33 करोड़ 7 लाख रुपये का, अर्थात स्थापना समय से आज तक के उत्पादन में करीबन 100 गुना वृद्धि। और इसका शुभारंभ हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री

0: श्री जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों से ही हुआ।
1: हॉस्पिटल से आगे बढ़ती हुई मैं बल्लारी व रायचूर जिलों में से आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती हूँ। वैसे तो पुराने व आधुनिक अभियंताओं ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बसवन्ना, रामसागर, कोरिगल, शिवपुर और गंगावती आदि बहुत सारी नहरें बनाकर मेरे पानी को उस भूखंड पर बहाया जहां मैं नहीं पहुंच सकती थी। इस तरह मेरे पानी की सार्थकता और बढ़ी। वैसे आगे चलते चलते मैंने कर्नूल जिले में प्रवेश किया।
2: इस नगर के एक छोर पर तुंगभद्रा नदी है तो दूसरे छोर पर तुंगभद्रा मशीनरी एंड टूल्स लिमिटेड संस्था, दोनों जीवनदायिनी हैं। इसने भारत के गौरव में चार चांद लगाए हैं। इस संस्था के बारे में बता रहे हैं मैनेजर श्री के रामकृष्णय्या।
3: 1991 ఆర్డర్ 1993 కల్ సప్లై సంత కంప్లీట్ చేశాము। దీనికి గాను మాకు 1990-91 సంవత్సరం
4: విదేశం మే కదం రఖనే కా గౌరవ్ హమే మిలా 1991 మే కాగజ్ ఉద్యోగ్ కే లియే आवश्यक के सामग्री की पूर्ति हम करते हैं।
3: पेपर मशीन
4: इसके लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल से हमें विशिष्ट निर्यात अवार्ड भी मिला है। इसी तरह अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका से कागज मशीन निर्यात के लिए ऑर्डर मिले हैं। हमारे हाथ में अब 36 अरब डॉलर के ऑर्डर्स हैं।
5: कर्नूल नगर में 500 साल पुरानी सैयद शाह मियां साहब कादरी की दरगाह,

0: जाति पाति धर्म से परे मानवता के संदेश का जीता जागता सबूत। हजरत बाबा की प्रतिभामयी जीवनी व संदेशों को वहां के मौलवी सैयद शाह अनवर बाबा कादी जी द्वारा।
1: बाबा वचने दिन बगदाद शरीफ नुचे बगदाद बगदाद बरनाला बरनाला वो मुखा मुंदी
2: एकड़ंडी
1: बरनाला पंजाब बोला।
3: 500 साल पहले हजरत बाबा जी बगदाद से यहाँ पर आए थे, फिर बरनाला पंजाब जाकर घोर तपस्या की उन्होंने, वहां से फिर बगदाद होकर कर्नूल में आ बसे। अपने पास आए हुए लोगों को मानवता परोपकार जैसी उपदेश दिया करते थे वे। 40-50 साल के बाद वे समाधि में चले गए। अब भी दरगाह पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं अपनी मन्नतें लेकर।
4: श्री मुस्तफा ने हमें बताया।
5: నా పేరు ముస్తఫా అండి, నేను తాడపత్రి నుండి వచ్చానండి. నేను నెలగా ఊతురు వస్తూ ఉంటానండి. ఇక్కడ స్వామి మహత్యం ఎక్కువ అండి. ఇక్కడ ఎవరన్నా రాని ఒక దినం నిద్ర చేసి
6: మేరా నా ముస్తఫా హై మనసులో అనుకుంటే మై తాళ్ళా పురుదు తూర్ సే ఆయా హు అందు గాని ఇక్కడ మై హర్ మహీనే మే బాబా కే దర్శన్ కే లియే ఆతా హి రహతా హు ఫిర్ భీ బార్ బార్ ఆనే కో मैं बाबा के दर्शन के लिए आता ही रहता हूँ, फिर भी बार बार आने को मन करता है।
0: और ये हैं श्रीमती रत्नम्मा।
7: रत्नम्मा गुड़ूर नंटी मको कोनी कष्टाल पाले वचन।
8: मेरा नाम रत्नम्मा है, गुड़ूर से आई हूँ। मेरे शौहर को नौकरी से निकाल दिया गया था, हम बाबा के पैर पड़े, अब तो फिर उन्हें नौकरी मिल ही गई है।
9: तुम भद्री कितना सुंदर और महत्वपूर्ण है यह धार्मिक स्थल, दो जीवन धाराओं का यह पूर्व संगम।
10: हाँ तूने ठीक कहा, मेरा नारा है मानवीय एकता। मेरे तीरों पर द्वितीय काशी यानी कि दक्षिण काशी अलमपुरम भी है, जो विष्णु के अवतार परशुराम की माँ रेणुका देवी के मंदिर के लिए सुविख्यात है। यहाँ पर इतिहास से संबंधित बहुत सारे शिलालेख मेरी सफलता के प्रतीक तुम्हें मिलेंगे। अपनी सफलता का गर्व है मुझे, मेरी तपस्या है।

0: निस्वार्थ सेवा,
1: हाँ तपस्या।
0: आप दोनों ने कभी योगी राघवेंद्र स्वामी के बारे में सुना है?
2: हाँ हाँ, ये तो वही महापुरुष है ना जो महाभक्त प्रहलाद के अवतार माने जाते हैं। प्रहलाद की तपोभूमि उनकी यज्ञ भूमि थी।
0: हाँ, वही भूमि जो मंत्रालयम कहलाती है।

0: कर्नूल जिला आदविनी तालुक से 52 किलोमीटर की दूरी पर तुंगभद्रा के किनारों पर बसा मंत्रालयम पुण्य क्षेत्र। यहाँ पर सभी धर्मावलंबी स्वामी जी की समाधि वृंदावन के दर्शन के लिए आते रहते हैं। कहा जाता है कि महाभक्त शिरोमणि राघवेंद्र स्वामी समाधि ही में से अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और पूरा करते हैं भी। स्वामी जी की समाधि की एक और विशेषता यह है कि यह भूमि उस समय के आदवेनी नवाब सिद्दीक मसूद खान की भेंट थी।
1: मेरी यात्रा मुक्ति की तरफ। संगमेश्वर नामक क्षेत्र पर कृष्णा नदी में मेरा सम्मेलन। मुक्ति की ओर चलते चलते आखिरी बार फिर एक बांध सुंकेसला में बंधकर करीब 3 लाख एकड़ के लिए सिंचाई की सुविधा देती हूँ।
2: अरे वाह, एक कपूर जैसे, सुगंध के वृक्ष जैसे, बारंबार लोक कल्याण के लिए तुम्हारा यह आत्मसमर्पण।
1: हम नदियों का जीवन ही मानव सेवा के लिए है। ग्राम, नगर और राज्य की सीमाओं को पार कर भारतीय एकात्मता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की व्याप्ति करना हमारा जीवन लक्ष्य है। कल, आज और कल भी।

बाल कृष्ण के प्रेत में तन्मय हर गोपी दिन रात कान्हा के ही सपने देखती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग गोकुल में गैया चराते, बंसी बजाते, माखन चुराते और गोपियों संग रास रचाते हुए मनमोहक लीलाएं करता है। यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है, तब गोपियां सुध बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी, मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण सी गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी भजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी प्रीत हमारी।

जो भक्ति का धन है, सुमिरन का धन है, पूजन का धन है। इस धन को सबसे बड़ा धन क्यों कहा गया? ऐसी इसमें कौन सी विशेषता है? तो इस पंक्ति में सुनिए, समझ में आ जाएगा क्यों कहा गया।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी। कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे, अपने साथियों के साथ देखा कि घंटी भी बंधी हुई। समझ गए गोपी बड़ी चालाक, तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं, चुप रहना, मेरे साथियों को माखन खाना। मटकी फोड़ी गई, सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब

खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा, ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली, हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाएं तो हम सारे संसार को बताएं कि अब प्रसाद ले लो, भगवान ने भोग लगा लिया। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया, ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता हूँ, इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं। मैया मोरी।

इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया,

0: अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की कि माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी।
1: अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी।

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

एक बार आपकी जोरदार तालियां हमारे सब साथी कलाकारों के लिए। साइड दम पर मधुर एगे, गिटार पर हिमांशु बिजुधर, संतूर पर पीयूष पवार, तबले पर यामा सरशार, और जिन्होंने डांस प्रस्तुत किया संगीता रॉय, आज के अनाउंसर स्मिता परिक, और हारमोनियम पर

0: नमस्कार। आज से हम एक नया धारावाहिक प्रसारित कर रहे हैं, शिव महिमा। ये धारावाहिक भगवान शंकर से संबंधित है। चारों वेदों, सभी उपनिषदों और पुराणों में किए गए वर्णन का सार तत्व है और शिव पुराण पर आधारित है। प्रिय श्रोताओं, हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जहां शिव पुराण का वाचन आरंभ होने वाला है। यहां मुनि श्रेष्ठ सूत जी और शौनक जी भगवान शिव की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
1: ओम नमः शिवाय।
2: मुनि शौनक, सारे संसार में पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं में अकेले भगवान शंकर ही ऐसे देवाधिदेव हैं जिनकी पूजा दोनों रूपों में की जाती है, साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी।
3: महामुनि सूत जी, ये अत्यंत विलक्षण बात है, कृपा कर विस्तार से समझाइए।
2: शौनक, भगवान शिव का लिंग रूप निराकार है, वो संसार की उत्पत्ति का प्रतीक है, और भगवान शंकर का मूर्ति रूप साकार है। साकार रूप में भगवान शंकर कामदेव को भस्म करने वाले भी हैं।
3: सूत जी, ये कथा तो बड़ी रोचक जान पड़ती है। भगवान शिव के साकार रूप के संबंध में कुछ और बातें बताइए।
2: शौनक, भगवान शंकर का साकार रूप अत्यंत दिव्य और गंभीर तत्वों से भरा हुआ है। सृष्टि के आरंभ में सुरों और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकले अमृत को तो देवताओं ने ग्रहण कर लिया, किंतु सारे संसार की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण

0: करने वाले भगवान शिव ही हैं।
1: हाँ, ये कथा तो सुनी हुई है।
0: इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के नख से प्रवाहित सुरसरी गंगा को अपनी जटाओं में बांधने वाले भगवान शंकर ही हैं, जिन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को अपने शीश पर धारण किया। दूसरी ओर वो संसार से पूरी तरह विरक्त भस्म रमाए कमंडलधारी और वीतराग भी हैं, शीतलता के प्रतीक चंद्रमा को अपने शीश पर धारे हुए भी हैं और संसार के विनाश के लिए अपने ललाट पर तीसरे नेत्र को भी धारण किए हैं।
1: भगवान, इसका रहस्य क्या है?
0: शिव महिमा से संबंधित अनेक प्रसंग हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के अतिरिक्त अनेक उपनिषदों और पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं वायु पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और लिंग पुराण। लेकिन शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत विवरण शिव पुराण में ही सबसे अधिक है।
1: महाज्ञानी सूची, मुझे पुराणों की कथा के सार तत्व को समझाइए।
0: वत्स, ये शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, कानों के लिए अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार का उपदेश पाकर ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है।
1: महामुनि, इस कथा को सुनने से और उस पर आचरण करने से कौन कौन से पापों का नाश हो जाता है?
0: शौनक, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें देवराज नामक एक व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ।

0: देखा तुमने जी, ऊंचे कुल में पैदा होने में कितना बड़ा सुख है।
1: हाँ देवराज जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। संसार भर के छल कपट अनाचार करने का जैसे जन्मजात अधिकार ही मिल जाता हो।
0: ठीक कहा तुमने, उच्च कुल का व्यक्ति जानकर भोले भाले लोग अनायास ही मेरी धूर्तता का शिकार बन जाते हैं।
1: और बिना किसी श्रम के आप अटूट धन के स्वामी बन जाते हैं।
0: अरे अरे, वो देखो एक व्यापारी आ रहा है।
1: हाँ हाँ गुरुजी, देखने से तो काफी धनी जान पड़ता है।
2: मैं कोई नई चाल चलता हूँ, तुम यहीं ठहरो और मेरी प्रतीक्षा करो।
1: जी अच्छा।
3: अरे मरा रे, हाय ईश्वर, मर गया रे।
4: क्या हुआ बंधु?
3: हाय पेट में भयंकर दर्द, असहनीय वेदना।
4: आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं?
3: किरात नगर का बामन हूँ, वेद पाठी हूँ। पास के नगर विराट के सेठ कृष्ण चंद्र के निमंत्रण पर आया था, वहीं से लौट रहा था कि
4: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको नगर वैद्य के पास ले चलता हूँ।
3: ठीक है, चलिए
4: चलिए।
3: आपकी बड़ी कृपा।
4: कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। लीजिए जल पीजिए।
3: जी। अरे वाह, ये कैसा चमत्कार!
4: क्या हुआ महाराज?
3: पानी पीते ही सारा दर्द गायब। मुझे लगता है मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। आपके हाथ में तो अद्भुत शक्ति है महाराज। क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ?
4: हाँ क्यों नहीं।
3: अरे वाह,
2: आपकी हाथ की रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं। यश है, कीर्ति है, लंबी आयु है, बहुत सुखी परिवार है आपका।
4: सच है महाराज, मेरी पत्नी और दोनों बेटियां बहुत ही धर्मपरायण हैं।
2: लेकिन आपको संतान का, आपका पुत्र
4: नहीं है महाराज।
2: लेकिन योग है
4: जी,
2: अवश्य है, निकट भविष्य में ही है।
4: अच्छा,
2: लेकिन ठहरिए महाराज। ओह, ये

0: राहू और शनि की वक्र दृष्टि, मंगल का कोप। अच्छा एक बात बताइए
1: जी,
0: देखिए संकोच ना कीजिए।
1: नहीं,
0: क्या पिछले दिनों आपने पीले सफेद रंग की कोई चमकदार चीज खरीदी?
1: पीले सफेद रंग की कोई चीज नहीं, तो
0: याद कीजिए, कोई कपड़ा, कोई बर्तन अथवा कोई आभूषण।
1: आभूषण? अरे हाँ, याद आया, पिछले साल मैंने अपनी पत्नी के लिए हीरे का हार खरीदा था।
0: बस बस बस बस, वही है अनिष्ट की जड़। उस हार के घर में आने के बाद से ही आपके पुत्र प्राप्ति के योग अकारत होने लगे हैं महाराज। उसी हार के कारण आपकी आशा फलवती नहीं हो रही है।
1: अच्छा
0: हाँ?
1: तो महाराज उसका कोई उपाय?
0: उपाय? उपाय तो है, यदि वो हार आप बिना किसी को बताए किसी अपरिचित बामन के हाथों से बहते जल में छुड़वा दें तो 6 माह के अंदर ही आपकी पत्नी गर्भ धारण कर सकती है।
1: अच्छा
0: हाँ, लेकिन कठिनाई ये है कि इसकी जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए, आपकी पत्नी को भी नहीं।
1: ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा।
0: भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। अच्छा अब मुझे अनुमति दें, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। भाई भाई तनिक गाड़ी रोकना।
2: नहीं नहीं भाई, घर ले चलो।
1: महाराज आप तो भविष्य दृष्टा हैं, ईश्वर की कृपा से आपके दर्शन हुए। महाराज अब आप ही मेरे लिए वो अनुष्ठान भी कर दे तो
0: मैं। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ओ वैसे मैं अपरिचित बामन तो हूँ, लेकिन ये काम किसी जानकार से ही करवाएं तो ठीक रहेगा। नहीं नहीं नहीं नहीं, जानकार तो नहीं होना चाहिए, बड़ी व्यवस्था है।
1: महाराज क्या आप मेरे लिए इतना इतना कष्ट सहन नहीं करेंगे? महाराज मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, एहसान की कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे ऊपर आपका बहुत उपकार है। यदि मैं आपके थोड़ा सा भी काम आ सकूं तो मेरा बोझ ही कम होगा ना। लेकिन एक बात कहते थोड़ा संकोच होता है।
2: महाराज संकोच छोड़ें और कहिए।
0: इस पूजा के लिए जो भी पूजन सामग्री दक्षिणा आदि होती है ना, वो यजमान को ही करनी पड़ती है, वरना उसका सुफल प्राप्त नहीं होता।
2: अरे महाराज ये बात कहने में भला संकोच क्यों, ये तो अनुष्ठान का विधि विधान हुआ ना। अच्छा ये बताएं, क्या इसके लिए 500 सोने की मोहरें काफी होंगी?
0: हाँ इतने में भी काम चल ही सकता है, लेकिन महाराज पूरे विधान के लिए अगर 1000 सोने की मोहरें होती तो बहुत अच्छा होता।
2: अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको उस हार के साथ 1000 सोने की मोहरें भी दे दूंगा। लीजिए महाराज अपना घर आ गया।
0: आहा, कितना बड़ा महल है। अरे आप तो धन्य हैं महाराज।
3: देखा बंधु कैसी युक्ति निकाली।
4: गुरुदेव ठगी विद्या में तो आपका जवाब ही नहीं है।
3: देखो कितनी आसानी से ये हार भी झटक लिया और पूरी 1000 सोने की मोहरे भी,
4: दोनों चीजें हड़प ली आपने।
3: हाँ?
4: लेकिन गुरुदेव हार और धन को लेकर हमें फौरन इस नगर को छोड़ देना चाहिए। क्यों?
0: कहते तो ठीक हो तुम भी, लगता है अब तुम भी ठगी विद्या के पारंगत होने लगे हो।
3: चलो दूसरे नगर चलते हैं।
4: चलिए गुरुदेव।

0: लगता है ये कोई बहुत बड़ा शिवालय है।
1: जी गुरुदेव, देखिए ना कैसा अद्भुत मेला है यहाँ पर।
0: तुम जरा मेला देखो, मैं अभी आता हूँ।
1: जी
0: भाई, भाई जरा सुनिए।
2: कहिए महाराज,
0: ये कौन सा स्थान है और यहाँ क्या हो रहा है?
2: लगता है आप परदेसी हैं। महाराज, ये झूसी प्रयाग का प्रमुख शिव मंदिर है और मैं इस मंदिर का महंत हूँ।
0: अच्छा,
2: आज से ही यहाँ शिव पुराण का पारायण शुरू हो रहा है। देश भर के संत महात्मा यहाँ इसीलिए आए हुए हैं। आइए, आप भी दर्शन कीजिए, सत्संग का आनंद उठाइए।
0: हाँ अवश्य, आपका अनुमान सही है कि मैं परदेसी हूँ।
2: कोई बात नहीं, मैं यहाँ के व्यवस्थापक महोदय से कहकर आपके आवास और भोजन आदि की व्यवस्था करवा देता हूँ।

शिव महिमा को सुनकर कैसा रोमांच हो रहा है। जय शिव शंकर, जय महादेव। सारे संसार का कल्याण करने वाले शिव, क्या मुझ पापी का भी कल्याण संभव है? हे भोले शंकर, तुम्हारी जय हो। अरे ये कैसे जोत है?

और कैसी शीतलता, कैसा आनंद है। हे शिव शंकर, तुम्हारी जय हो। मुझे अपनी शरण में लो भगवान। मैंने जीवन भर कुकर्म किए हैं, क्या मुझे क्षमा नहीं करोगे। मैंने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया भगवान। झूठ बोल कर भोले भाले लोगों को ठगता रहा, ठगता रहा। मुझे क्षमा करो महादेव, मुझे क्षमा करो। मैं सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ। हाँ भगवान, मैं प्रायश्चित करता हूँ। शंकर, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मुझे अपने चरणों

0: महाराज, आपकी तबीयत कैसी है?
1: मैं अच्छा हूं। शिव महिमा को सुनकर मेरे मन के सारे रोग दूर हो गए।
0: महाराज, ये फल लीजिए, भगवान शंकर का प्रसाद है।
1: नहीं भाई, भगवान शंकर का असली प्रसाद तो मैंने ले लिया है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: महाराज, थोड़ा चरणामृत तो ग्रहण कीजिए।
1: मैंने अंचल छोड़ दिया है।
0: भला क्यों?

0: आइए आइए वैद्यराज, देखिए ये प्रवासी ब्राह्मण हैं, इनका शरीर बुरी तरह तप रहा है।
1: लगता है कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है,
0: लेकिन मुंह पर कैसी कांति है।

0: बंधुवर आंखें खोलिए, मेरे साथ वैद्यराज आए हैं।
1: महंत जी, अब मुझे कोई रोग नहीं, मैं निरोग हूं।
0: अरे आपकी नाड़ी तो एकदम ठीक चल रही है। विचित्र बात है, इतने दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो भी किसी विकार के लक्षण नहीं दिखते। अच्छा बंधुवर, आपने अन्न जल क्यों त्याग दिया?
1: अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। महंत जी,
0: कहिए बंधु।
1: मेरा प्रायश्चित भगवान शंकर को स्वीकार तो होगा ना? मुझे पश्चाताप है, घोर पश्चाताप।
0: निश्चय ही बंधु, शिव पुराण महात्म्य के 3rd अध्याय का 5वां श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है, पश्चात्तापः पापकृताम् पापानाम् निष्कृति परा सर्वेषाम् वर्णितम् सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। अर्थात पश्चात्ताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।
2: महन जी, यह आत्मा तो भगवान शिव को प्यारी हुई, इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कीजिए।

0: चलो, इस महापापी आत्मा को यमपुरी में ले चलो।
1: ठहरो, ये पापात्मा नहीं पुण्यात्मा है। इसका स्थान यमपुरी नहीं शिवलोक है, इसे बंधन मुक्त करो।
0: किंतु देखिए, इसने तो जीवन भर अनेक पाप कर्म किए हैं, ये रहा इसका लेखा जोखा।
1: जीवन के अंतकाल में इसने शिव पुराण सुनकर अपने समस्त पापों का प्रायश्चित भी तो किया है, उसका लेखा जोखा नहीं किया तुमने? जय शिव शंकर, जय महादेव, जय जय भोले। ठहरो, ये क्या हो रहा है? मेरे दूतों के काम में विघ्न डालने वाले तुम कौन हो? हम भगवान शिव के गण हैं महाराज, इस पुण्य आत्मा को शिवधाम ले जा रहे हैं।
2: शिवधाम? ठहरो, मुझे ज्ञान दृष्टि से मालूम करने दो। हे नीलकंठ, हे त्रिनेत्र, हे शिव शंकर।
3: अरे, इस आत्मा को तो भगवान शिव ने अपने श्री चरणों में स्थान दिया है। हो, शिव पुराण के सुनने के प्रभाव से युक्त इसके प्रायश्चित ने इसके सारे पाप नष्ट कर दिए।
1: यमदूतो,
4: भगवान,
1: तुमने शिव पुराण के महत्व को अनदेखा कर दिया। जाओ, भविष्य में यह भूल दोबारा ना होने पाए।
4: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ।
5: हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस अद्भुत कथा को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है।
6: हे शानक, सुनो, तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हें शिव पुराण की महिमा

0: संबंध में एक कथा और सुनाऊंगा।
1: हे महामुनि, आपका यह कथन अत्यंत मनोरम और संसार के समस्त प्राणियों के लिए पापनाशक और दुख निवारक है। जन कल्याण के लिए इसे अवश्य सुनाइए।
2: शिव महिमा। अभी आप शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सफर
1: आकाशवाणी। जो मारे अनेक मेरी आँख काशनी।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। शाम दे 4:30 वजन वाले ने आओ हुण तुहानू लै चलदे आ श्री दरबार साहब अमृतसर, जिथे तुसी शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

रखी हा जो गाय।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह, जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस, बहनी के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस, काना भूसी कैलस हंस के ऐसन मंत्र।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक माला की दूसरी कड़ी। लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर।
2: रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। बड़े बड़े प्रतापी एकत्र हुए हैं जनक की यज्ञशाला में। जनक अपने सेवकों को आदेश दे रहे हैं, सबको उनके योग्य आसन दो। भारी भीड़, जनकपुरी के बाल जुबान जरठ नर नारी अपने समस्त गृह कार्य बिसार कर रंगभूमि में उमड़ पड़े। और तभी राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर सरीरा। श्रोताओं, भगवान रामचंद्र के आसन ग्रहण करने पर

0: नारी बिलो कहीं हरसिहिं निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप। और राम ही चितव भाई जेहि सिया सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। श्रोताओ, मैं बेचारा कवि कैसे उस अनिंद्य और सहस्र रूपी शोभा का वर्णन कर सकता हूं, आप स्वयं देखिए। मिथिलेश जनक की रंगस्थली में राजाओं की पंगत और नर नारियों के समूह के बीच राम लक्ष्मण, राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चो।
1: सब नृपगणों को सादर अपने अपने स्थान पर बैठा दिया ना?
2: जी महाराज।
1: भीड़ बहुत है,
2: किंतु सभी दर्शक अपने यथोचित स्थान पर बैठ गए हैं।
1: किसी से कटवाणी तो नहीं बोले?
2: नहीं महाराज, जैसा आपने कहा था, हम लोगों ने मृदु वचन बोलकर सभी नर नारियों से विनती की।
3: देखा तुमने उन दोनों राजकुमारों को?
4: जहां जहां जाई कुंवर बर दो, तहां तहां चकित चितव सबको।
5: मुझे तो ऐसा लगता है बिन भंज हूं भव धनुष विशाला, मेल ही सी राम उर्माला।
4: बिना धनुष तोड़े ही, क्या बात कही तुमने। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अब गाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा।
6: अरे एक बार कालव किन हो, सियहित समर जितब हम सो।
5: व्यर्थ मरहु जनी गाली बजाई, मन मोद कन्ही की भूख बुताई।
4: सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु संभु उर्वासी।
1: भाटगण तनिक इधर आइए।
2: जी स्वामी।
1: अब आप इस सभा के समक्ष मेरा प्रण घोषित कीजिए।
2: महाराज, हम इसी अवसर की बाट जो रहे थे।
7: नगाड़ा बजाओ। हे पृथ्वी का पालन करने वाले उपस्थित राजागण, सुनिए। पर्ण विदेह कर कहे हैं हम, भुजा उठाए हैं विशाल।
8: सामने मंच पर स्थित ये शिव धनुष भारी है, कठोर है, ये सभी जानते हैं। आपको ये भी विदित होगा, रावण और बाणासुर जैसे महाबलियों को भी इसे छूने तक का साहस नहीं हुआ। समझ लीजिए कि आप लोगों का भुजबल तो मानो चंद्रमा है, और ये कठोर धनुष उसे ग्रसने वाला राहु है। हमारे स्वामी मिथिलेश जनक की घोषणा है, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज

0: आज जोई तोरा निर्भवन जय समेत वैदे ही बिन ही विचार बरई हट दे।
1: अरे देखो देखो कैसे तमतमाकर ये राजा लोग धनुष की ओर जा रहे हैं।
2: पर एक हाथ तो अपने आसन से उठा ही नहीं।
1: वे समझदार हैं और वो देखो वो जो तमक कर जोर अजमाने

0: पर साहब
1: दगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे
0: सब निप्र भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी।
1: सभी राजा श्रीहत होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब क्या होगा?
0: होगा क्या, लौटेंगे अपना समूह।
1: चुप चुप चुप, जनक जी कुछ कह रहे हैं।
0: शांत शांत शांत।
2: अतिथियों, मैं ये क्या देख रहा हूं, दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जोपन उठाना। मेरी मनोहर कन्या बड़ी भारी और अतिकमनीय कीर्ति, इन्हें पाने के लिए इस धनुष का दमन करने वाला वीर क्या विधाता ने रचा ही नहीं। इस धनुष को तोड़ना तो अलग रहा, कोई इसे दिल भर भूमि भी न छुड़ा सका। अब जनिको माखे भटमानी वीर बीन मही मैं जानी। जो जनते बिन भट भूमि भाई तो पनु करी होते ना आसाई।
3: अब क्या होगा?
1: देखो छोटा भाई कुछ कह रहा है,
3: उसका मुख तो देखो। माखे लखन कुटिल भई भौहे रदपट भरकत नयन रिसो है।
4: हे दाद, रघुवंश सिंह महु जहाँ को होई ते ही समाज अस कही न कोई। राजा जनक ने आपके यहाँ होते हुए भी बड़ी अद्भुत वाणी कही। सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक ब्रह्मांड उठावो। काचे खट जिमी डारो फोरी सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना को बाप रोपे नाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो कौतुक करूं बिलोकी अवसो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, यदि आपके प्रताप के बल से इसे कुकुर मुत्ते की तरह ना तोड़ फेंकूं तो आपके चरणों की शपथ है मुझे, मैं फिर कभी धनुष तरकश को हाथ में भी ना लूंगा।
3: सुना
1: प्रभु? देखो बड़ा भाई क्या कह रहा है, वो भी कुछ कहेगा क्या?
3: ना सय नहि रघुपति लखनु निवारे प्रेम समेत निकट बैठा दे।
1: विश्वामित्र मुनि उठ रहे हैं,
3: जा रहे हैं क्या?
1: बड़े राजकुमार से कुछ कह रहे हैं।
5: दशरथ पुत्र पुरुष सिंह, तुम्हें इस संकट का निवारण कर सकते हो वत्स। उठहु राम भंजहु भव चापा नेटहु तात जनक परितापा।
6: सखी देखो तो खड़े हो गए राम, पर देखो देखो मुखड़े से लगता है हर्षु विषादु न कछु उर आवा। मुझे तो इनका सहज स्वभाव से उठना अच्छा लगता है। थवनी जुबा मृगराजु ल जाए। सखी देखो तो उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन फ्रिंग। देवताओं पितरों से मेरी तो प्रार्थना है सखी, यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहू रामू गणेश गोसाई। सखी सखी महारानी कह रही है सब लोग कौतुक निहार रहे हैं, कोई जाकर इन दोनों के गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं। राजा जनक भी अपनापन खो बैठे हैं। कहती हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा हार सकल भूप कर तापा। सौधन राज कुंवर कर दे ही बाल मराल की मंदर ले ही। ऐसे तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए। देखो ना कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोखे उस सुजसु सकल संसारा। रबी मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर लेता है, जरा सा अंकुश महामत गजराज को दबा लेता है।
7: हो प्रसन्न महेश भवानी, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे फलवती कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गण नायक बरदायक देवा आज लगे कि न्यो तो सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी करो चाप गुरता अति थोरी।

0: पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठाना है। वो लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री भी डरे हुए हैं, वो भी तो पिताजी से कुछ नहीं कहते। विद्वानों की सभा में ये बहुत ही अनुचित बात हो रही है। कह धनु कुल सहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। हे विदाता, मैं किस तरह धीरज धरूं? भला कहीं सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है? लगता है सारी सभा की बुद्धि ही बावली हो गई है। अब मोहि शंभु जाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी।
1: सखी सखी, तुम जरा सीता को संभालो, न जाने क्या बीत रही है इसके जी पर। राजकुमारी परिताप मत करो।
2: राजकुमारी, चिंता के मारे तुम्हारी आंखें इधर उधर डोल रही हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन विधु मंडल डोल।
1: बोलती क्यों नहीं राजकुमारी? गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी,
2: लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना।
0: यदि तन मन वचन मोर बनु साचा, और रघुपति पद सरोज जितु राजा है, तो भगवान सकल उर्वासी, करे ही मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संते हो।
1: आंखें खुलो राजकुमारी, वो तुम्हारी ओर देख रही हैं।
3: सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। लगता है उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यही समय है, अब मुझे और विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। गुरुवर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम।
1: देखो उधर देखो सखी, लखन लिखेउ रघु बंस मनी, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंड।
4: हे दिशाओं के हाथियों, हे धरती को धारण करने वाले कच्छप शेषनाग बारह, राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा।
5: ये क्या हुआ? कैसे दामिनी दमकी? आकाश में ये गोल गोल सा आकार कहां से आया?
6: वही तो धनुष है।
5: उठा भी लिया?
6: उठाने की बात करते हो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब उठाड़े।

0: सखियो राजकुमारी को राम के पास ले चलो। जयमाला पकड़ाओ, आगे बढ़ो बेटी।
1: राजकुमारी, सामने रघुवीर राम खड़े हैं, अब संकोच न करो। पहिरा बहु जयमाल सुहाई, बेचारी प्रेम विवश पहराई न जाई। जब उन्हें इतना भी स्पर्श नहीं कर पाती तो पैर किसे छूगी राजकुमारी? समझी नहीं सकी, गौतम तियगति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। राजकुमारी के इस भय की बात सुनकर रघुवंशमणि मुस्कुरा उठे। राजकुमारी, वो मुस्कुरा रहे हैं, यही अवसर है। राजकुमार के चांद मुख से हमारी राजकुमारी के कर कमल भयभीत हैं। गाओ गाओ सखी, जयमाला पड़ रही है।

0: ये भी कोई बात है?
1: बहनों का बात।
0: क्यों भाई क्यों?
1: छीन लो सीता को, दोरे धनुष ताड़ नहीं सरे।
0: दोनों राजकुमारों को बांध कर ले चलो, जीवत हमारी तुम्हारी को बरई।
1: और महाराज जनक उनकी सहायता करें
0: तो भी जीतऊ समर सहित दो भाई।
2: कैसी निर्लज्ज बातें कर रहे हैं आप लोग? उस समय आपकी शूरता कहाँ गई थी जब धनुष तोड़ना था?
3: शान शान,
4: अरे आप लोग बैठे।
3: अरे इधर देखो, इधर उधर देखो, प्रवेश द्वार की तरफ
4: है? ये कौन आ रहा है? बिशप कंठ पुरबाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगशाला,
5: कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे।
4: रघुपति परशुराम,
5: परशुराम
0: नाम लेकर मुनिवर को दंडवत प्रणाम करें।
6: दंडवत प्रणाम
7: प्रणाम प्रणाम
8: दंडवत प्रणाम
9: दंडवत
10: प्रणाम
11: दंडवत प्रणाम।
12: विदेहराज, आपकी इस रंगस्थली में कहो काह अति भीड़।
13: मुनिवर, बात ऐसी है कि मेरी बेटी सीता, जिसे अभी आपने अपना शुभाशीर्वाद दिया है, उसका स्वयंवर था, इसलिए सभी राजागण मेरे अतिथि होकर आए हैं, और इसीलिए सभा में ये सजावट शोभा भी आप देख रहे हैं।
12: ये तो हुआ, पर ये धनुष क्यों टूटा पड़ा है?
13: जी, मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का स्वामी होगा। तो
12: मेरे आराध्य देव का धनुष कहूं चढ़ जनक धनुष कै तोड़ा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटू मही जहां लही तब राजू।
14: नाथ, संबुधनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा?
12: मेरा दास सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। सुनहु राम, जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सौ बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जही हैं सब राजा।
15: मुनिवर, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबू नासी फिरस कीनी गोसाई, एही धनु पर ममता के हेतु।
12: रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार।
15: सुनहु देव, सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के फोरे, छुअत टूट रघुपति हु ना दोसु, मुनि बिन काज करिए कतरो।
12: रे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या? बालक बोली बदहू नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूपि बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। रे महीप कुमार, देखिए फरसा, सहस बाहु भुज छेदन हारा, कहे देता हूं

0: तू पिता ही जनी सोच बस करसि महीप किशोर गर्भन के अर भक्तलन परसु मोर अति भोर।
1: मुनिवर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोह ही देखाव को ठारू चहत उड़ावन फूके पहारू। सुनिए महाराज, यहाँ कुम्हार बतिया को नाही जे तरजनी देखी मरे जाए। देख कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको भृगुवंशी समझकर आपके जनऊ को देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक कर कहता रहा। हमारे कुल की रीति सुर महिसुर हरिजन और गाय इन पर हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते। इन्हें मारने से पाप और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति मिलती है। इसीलिए आप मारेंगे भी तो भी आप ही के पैर पड़ेंगे। तो मुनिवर कोटि कुलिस स्तंभ बचनु तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर।
0: कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुधा संकु काल कबुल हुई है छन माई कहू पुकार खोरी मोहिनाई तुम हटकौ जो चहूं उबारा कही प्रताप बलु रोष हमारा।
1: हे मुनि आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन ही करनी बार अनेक भांति बहुबरनी नहीं ततो सु तब पुनि कुछ कहू जनेरे से रो के दुसह दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोभा गारी देत ना पावहु शोभा सूर समर करनी कर कहीं ना जना वहिया विद्यमान रन पाए रिपु कायर कत ही प्रताप। लेकिन आप मुनिवर आप तो तुम तो काल हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा।
0: सुनिए विश्वामित्र अब जन देही दोष मोहि लोगु कटुवादी बालक बद जोगु बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अभी यह मरण हार भा साचा।
2: क्षमा करें बंधुवर इससे अपराध हुआ बाल दोष गुण गनहिन साधु।
0: घर कुठार में अकरुण कोही आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देता जा रहा है फिर भी बिना मारे इसे छोड़ देता हूँ। सो क्यों केवल कौशिक सील तुम्हारे नत यही काट कुठार कठोरे गुरही पुरिन हो त्यू श्रम थोरे।
1: हे भगुपति परशुराम परसु दिखा बहु मोहि मित्र बेचारी पचौ नृप द्रोह मिले न कबहु सुभट रन गाय विज देवता घर ही के बाड़े।
3: अनुचित है
4: अनुचित है
3: अनुचित
4: है अनुचित
3: है।
5: नाथ करहु बालक पर छोहु सूद दूध मुख करिय न कोहु जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना कौ की बराबरी करत आयाना जौ लड़िका कछु अजगर करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम समसील धीर मुनि ज्ञानी।
3: लेकिन फिर हंसा तेरा ये भाई राम तोर भ्राता बड़ पापी गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पै मुख नाही सहज टेढ़ अनुहरई न तोही नीच मीच सम देख न मोही।
1: सुनिए मुनिवर क्रोध पाप कर मूल जे ही बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया परिहरि कोप करिय अब दाया टूट चाप नहीं जुरही रिसाने बैठी हो ही पाए पिराने जो अति प्रिय तो करिय उपाय जोरिय को बर गुनी बोलाए।
0: राम मैं तेरे ऊपर ये कम कृपा नहीं कर रहा हूँ बचा हूँ विचारी बंधु लघु तोरा इसका तो मनु मलीन तनु सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घटु जैसे।
5: सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचनु करिये नहीं काना बररे बालकु एक सुभाव इन्हीं न संत विदुष ही काऊ तेही नाही कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कृपा कोप बधु बंधव गुसाई मौ पर करिए दास की नाई, कहिए बेग जही विधि सिचाई, मुनि नायक सोई करो उपाय।
3: राम, मेरा रोष कैसी जा सकता है, जब अजहू अनुज तब चितब अनय से, मेरा रोष क्या प्रथा हो जाए, नहीं एही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। ये भी कोई बात है, गर्व सृवही अब निप रवनी, सुनी कुठार गति घोर, परसु अछति देखाऊं जियत, बैरी भूप किशोर।
5: हे मुनिवर, क्रोध त्याग दें, आपके कुठारू के आगे मेरा सिर है, जहिर से जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। मुनिवर, प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु विप्रवर रोसु, बेशु बिलोकी कछु नहीं दोसु। बात ऐसी है मुनिवर, लक्ष्मण तो लड़का ही है, देख कुठार बान धनुधारी, भय लड़के ही रिस बीरु बिचारी, नामु जान पे तुम्हें न चीन्हा, बंस सुभाए उतरोत ही दीन्हा। यदि आप अन्य मुनियों की भांति होते तो हे गोसाई, यही शिशु आपकी पदरज अपने सिर पर रखता। क्षमहु चूक अनचानत केरी, चहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हे नाथ, हम आपके बराबर होने की कैसे धृष्टता कर सकते हैं, कहां तो धरती पर चलने वाले चरण और कहां उन्नत मस्तक, और फिर राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। देखिए, हमारा तो एक ही गुण है धनुष, और आपके 9 गुण हैं श्रम दम तप इत्यादि, सभी परम पुनीत। विप्रवर, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे।
3: तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा जान पड़ता है, मुझे निपट ब्रह्मचारी न जान। सुन, तुझे बताता हूं कि कैसा विप्र हूं मैं, चाप स्रवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर किसानु, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई, मैं एही परसु काट बल दीने, समर जग जप कोटे ने कीने। तू ब्राह्मण मात्र के धोखे में मेरा निरादर कर रहा है, तुझे मेरा प्रभाव नहीं मालूम, ये धनुष क्यों तोड़ डाला, तेरा घमंड बढ़ गया और तुझे ऐसा अहंकार हो गया है, मनहू जीत जब उठा रहा।
5: तनिक सोच विचार कर बोलिए मुनिवर, रिस अति टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं है तू करो अभिमाना। यदि हम सचमुच किसी को विप्र कहकर उसका निरादर करेंगे तो ये सत्य भी सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे डरकर हम अपना मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलबाना, जौरन हम ही पचारे को, लरही सुखेन कालु किन हो, क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक तही पावर आना, कहो स्वभाव न कुल ही प्रसंसी, कालहु डरही न रन रघुबंसी।
4: क्या कहूं मैं, लगता है मेरी बुद्धि पटल उखड़ गए हैं, पर फिर भी
3: राम रमापति करधन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु।
6: अरे अरे, ये कैसा चमत्कार, धनुष आप ही आप मुनि के हाथों से उड़कर राम के पास पहुंच गया।
7: अद्भुत आश्चर्य, राजकुमार है कि ये देवता।
8: देखो देखो, भृगुपति परशुराम हाथ जोड़ रहे हैं।
9: अरे, ये तो राजकुमार राम के आगे विनती कर रहे हैं। सुनो सुनो।

0: रघुकुल केतु की जय, जय रघुकुल केतु की जय, जय जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुपति, जय रघुपति।
1: श्रोताओं, भगवान श्री राम ने कौतुक भरी लीला करके सीता स्वरूप आदि शक्ति से मिलन का अभिनय किया। उसके बाद हम आप जिसे विवाह कहते हैं वो तो रीति निभाई, क्योंकि जैसा उसी समय विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। फिर भी राजा जनक ने अवधपुरी को दूत भेजे। दूतों ने अयोध्या जाकर महाराजा दशरथ से आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। फलतः सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। फिर तो अवधपुरी के सारे समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे ठाट बाट और सज धज के साथ अयोध्या से बारात जनकपुरी आई। श्रोताओ, विवाह संपूर्ण होने पर राजा दशरथ चारों वर वधुओं को लेकर बारात के साथ अवधपुरी लौटे। अयोध्या में भांति भांति से आनंदोत्सव मनाया जाने लगा।

0: मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: अभी आप विशेष नाटक माला की दूसरी कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे श्री जगदीश चंद्र माथुर, निर्देशक श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, संगीत रचना श्री राम शरण दास ने की थी और ध्वनि संयोजन श्री कृष्ण कुमार नरूला ने किया। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेश शास्त्री, दिनेश्वर शास्त्री, राम अवतार शर्मा, चांद नारायण सक्सेना, शमशेर सिंह ठाकुर, सोमनाथ नागर, आशीष सिन्हा, मनोज भटनागर, राम गोपाल बजाज, राजेंद्र वर्मा, श्रीमती उषा ग्रोवर, श्रीमती सुषमा आहूजा और श्रीमती आभा जैन। संगीतांश के कलाकार थे श्रीमती पुष्पा अवस्थी, कुमारी शांता सक्सेना, श्री मनमोहन पहाड़ी और श्री अमिताभ। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
2: कल इसी समय इस विशेष नाटक की तीसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।